अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री राम लला भगवान के
1: जय,
0: श्री आनंद कन्न भगवान के
1: जय,
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान के
1: जय,
0: श्री दशरथ नंदन भगवान के
1: जय,
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान के
1: जय,
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान के
1: जय,
0: श्री चारो भैयन के
1: जय,
0: श्री हनुमान जी महाराज के
1: जय,
0: श्री राम जन्मभूमि के
1: जय,
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि के
1: जय,
0: श्री काशी विश्वनाथ के
1: जय,
0: श्री अयोध्या धाम के
1: जय,
0: श्री सरयू महारानी के
1: जय,
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के
1: जय,
0: समस्त पूर्वाचार्यों के
1: जय,
0: सर्वसंत वैष्णव भगवान के
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म के
1: जय।

ततनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम दिलला की जय। श्री पवन सुता

सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति न मत्सरा पतन्ति नो भवर्णवे वितर्कवीचि सङ्कुले विविक्तव

0: वर्जनम् भव बीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनय्यवधूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्री सीतारामनाम् महाराज की सन्दबले परमारथे भेदधरयवधूत राम नाम की गर्जना भर्जायवधूत श्री सीताराम नाम महाराज की
1: जय
0: श्री राम लला भगवान की
1: जय
0: श्री हनुमान जी महाराज की।

श्री गोविंद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि निर्माता ब्रह्म की योनि को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ एवं विविध प्रकृति गुणों के प्रभाव से अव्यय जीव इस भौतिक देह को

श्री भगवान कहते हैं कि निर्मल प्रकाशक सत्वगुण पापों से मुक्त करता है, जबकि रजोगुण राग वैतृष्णा तथा तमोगुण आलस्य एवं प्रमाद उपजाता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किसी एक गुण की प्रधानता के कारण देहधारी के कर्म स्वभाव एवं अंतगति में परिवर्तन होते हैं।

श्री गोविंद कहते हैं कि इन तीन गुणों को पार करने वाला नर ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री भगवान ऐसे त्रिगुणातीत के लक्षणों का वर्णन करते हैं।

0: पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारं मनवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी।
1: वाल्मीकि रामायणानुसार मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपनी बड़ी बहन सत्यवती की कथा सुनाई थी कि अपने पति के स्वर्ग सिधारने के साथ सत्यवती पति का अनुगमन करती सशरीर स्वर्ग गई और वह कौशिकी नामक नदी के रूप में परिणत हो गई। कालांतर में वही कौशिकी कोसी कहलाई।
2: सप्त सिंधु, सप्त गोदावरण, सप्त गंगम और सप्त गंडकी की तरह कौशिकी भी सप्त कौशिकी है। इनमें इंद्रावती, सुनकोसी, तामकोसी, लिक्षुकोसी, दूधकोसी, अरुणकोसी और तमोरकोसी। इन सप्त कौशिकी की धाराओं का क्षेत्र पश्चिम पूर्व 264 किलोमीटर और दक्षिण उत्तर 160 किलोमीटर तक फैला है।
3: विनोद जी, तो ये सातों नदियाँ यानी धाराएं हिमालय के उच्च शिखरों से उतरी हैं।
2: तमोर का उद्गम कंचनजंघा, तामाकोसी का गौरीशंकर, दूधकोसी का उद्गम मकालू शिखर, अरुण कोसी की कुछ सहायिकाओं का उद्गम सागर माथा यानी
3: एवरेस्ट शिखर, संसार के शिखरों में सर्वोच्च।
2: शोभा जी, वैसे बड़ी प्रवाह धारा तो अरुण कोसी की है, फिर भी कोसी सुन कोसी यानी स्वर्ण कोसी की ही धारा मानी जाती है। यह स्वर्ण कोसी तिब्बत से उतरती है, त्रिवेणी के पास सातों कोसी मिलकर महाकोसी कहलाती है, एक हो जाती है।
3: लेकिन विनोद जी, हमें वराह क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना है, नाव इंतजार कर रही है।
2: हाँ, देख रही है ना, प्रवाह के विरुद्ध हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: जी नहीं, हमारी नाव आगे बढ़ रही है। और विनोद जी, फिर वो युवा क्या जो प्रवाह के विरुद्ध आगे न बढ़ सके?
2: जी हाँ, कोसी के दोनों किनारों के प्राकृतिक दृश्य तो देखिए कितना मनभावन है। और जानती हैं शोभा जी, वराह पुराणानुसार सप्त कोशी क्षेत्र 21 तीर्थों का स्थान माना गया है।
3: 21 तीर्थ?
2: जैसे जल बिंदु, विष्णु धारा, अग्निसर, ब्रह्मसर, विष्णुसर, मत्स्यशिला, विष्णुपद आदि। विष्णु धारा वही कोका मुख है और विष्णुपद पास ही तो है। कहते हैं यही वराह भगवान ने पाताल से पृथ्वी को लाया था।
3: वो वहाँ वराह मंदिर।
4: यो वराह क्षेत्र हो, यहाँ धेरै टाढा टाढाबाट दर्शन गर्न मानिसहरु आउँछन्।
2: महाकोशी के बाएं तट पर ही वराह क्षेत्र और कोकामुख दो तीर्थ हैं। इनकी चर्चा तो महाभारत में भी आई है।
0: कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चांचलिकाश्रमा शाखभक्षास चीरवासा कुमारी निंदते दश।
2: शोभा जी, सप्त कौशिकी की धाराएं मानो सप्त लोक के प्रतीक सात स्वर्ग मार्ग हैं, जो वस्तुतः स्वर्ग से उतरते हैं। यहाँ से यानी वराह क्षेत्र से नीचे मुनि विश्वामित्र का आश्रम कुशहा है, उनकी तपोभूमि।
3: क्यों नहीं, ये स्थान ही साधना और तप के योग्य है। लेकिन विनोद जी, एक बात समझ में नहीं आई, कोसी जैसा जल प्लावन का दृश्य, बाढ़, कटाव, इतनी तबाही अन्य बड़ी नदियों में नहीं दिखती हैं।
2: ये जान लीजिए कि नवंबर माह में कोसी का जल निकास 18,000 घनफुट प्रति सेकंड, किंतु वर्षा काल में 3,00,000 घनफुट प्रति सेकंड देखा गया है। इस क्षेत्र में वर्षाकालीन बाढ़ की ऊंचाई अन्य दिनों की साधारण सतह से 40 फीट तक की ऊंचाई बढ़ जाती है, किंतु 1927 की बाढ़ में 56 फीट ऊंचाई बढ़ गई थी। इस तरह इस बाढ़ का निकास 7,00,000 घनफुट प्रति सेकंड बढ़ गया था।
3: मगर इतनी तेज रफ्तार और इतना अधिक पानी।
2: गंगा नदी का उद्गम समुद्र सतह से 10,300 फीट ऊंचा है, सिंधु का उद्गम 16,000 फीट, मगर कोसी का उद्गम समुद्र सतह से 18,000 फीट ऊंचा है। इसके अलावा सप्त कौशिकी के हिमालय क्षेत्र में 170 इंच वर्षा होती है, फिर हजारों वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर का और हजारों वर्ग किलोमीटर वर्षा का पानी समेट कर धाराएं त्रिवेणी पहुंचती हैं।
3: ओह, तभी तो।
2: और कोसी की प्रत्येक धारा दो पर्वतों की तंग दरार से बहती उतरती है। वर्षा काल में जल प्रवाह की गति प्रति घंटा लगभग 25 किलोमीटर है।
3: विनोद जी, तीव्र धारा के कारण ही कोसी गांव बस्तियों को उजाड़ती, जहां तहां ताल तलैया खोद देती थी। कहीं कहीं तो 60-70 फीट गहरे कुंड जैसा। जानते हैं, मेरे मामा जी कहते हैं कि कि ये ताल तलैया उन्हें लखपति बनाते थे।
2: लेकिन मछली के सिवा क्या उपजा पाते होंगे मामा जी?
3: मखान यानी मखाना, चाय के साथ नाश्ते में या खीर बनाकर, जैसे भी खाइए। 80-85 रुपए प्रति किलो मखान, फिर खेतों में जूट तंबाकू।

0: देश विदेश में बेचकर लाखों रुपए कमाते हैं व्यापारी लोग।
1: ये एक बात हुई, लेकिन गड्ढों में जहाँ जल जमा हो जाता था वहाँ मच्छरों का उपनिवेश बस जाता था, फिर मलेरिया, कालाजार, पीली यानी पेट निकल जाने वाली बीमारियों का गढ़। इनके अलावा बालू का टीला बना देना, मीलों तक उर्वर भूमि को वीरान बना देना कोसी के बाएं हाथ का खेल था।
0: मैं मानती हूँ कोसी सब में आगे रही है, उद्गम स्थान की ऊंचाई में सर्वोच्च, वर्षा में अपूर्व, तो तीव्र धारा द्वारा उजाड़ने में, बालू भर देने में भी प्रथम।
1: कोसी का ये निर्मम खेल 100-200 सालों से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से जारी है। सन 1300 ईस्वी के लगभग मिथिला भूमि के रक्षार्थ कोसी को रोकने के लिए एक विशाल बांध बांधा गया था। 80 से 100 फीट चौड़ा, 20 से 30 फुट तक ऊंचा और 80 किलोमीटर तक लंबा। कहते हैं मिथिला के शासक हरि सिंह के मंत्री वीरेश्वर ने बनवाया था, उसी के नाम पर बांध का नाम वीर बांध था। ये पश्चिमी तटबंध था। लगता है समय के थपेड़ों और कोसी की तलवार धार से भी तीव्र चोट से वीर बांध क्षत विक्षत हो गया, किंतु प्रतीत होता है इसकी प्रेरणा से भारत सरकार ने ये भीमनगर स्थित बराज बनाने का निश्चय किया।
0: सच, कोई 700 साल पूर्व इतने विशाल बांध का निर्माण, ऐसा मनुष्य। भैसा संग मनुसुबा के बहनों, बजर सन गात है।
1: ये तो लोकगीत है, जरा खुलकर तो सुनाइए।

0: शोभा जी, प्राचीन पुण्य तीर्थों के दर्शन श्रवण और मनन तो आपने कर लिए जी, नवयुग का नया तीर्थ देखने देश में हीराकुड, भाखड़ा नंगल, मयूराक्षी, दामोदर और कोसी योजना का निर्माण योजना अनुसार हुआ था, तो हम नीचे उतरे कोसी बराज को देखने निहारने।
1: विनोद जी, त्रिवेणी संगम से चतरा लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करती कोसी नीचे उतरती थी और फिर यत्र तत्र कोसी अपनी धाराओं को बिखेर देती थी, तबाही मचा देती थी।
2: सन 1951 जुलाई के आखिरी सप्ताह में कोसी की बाढ़ संपूर्ण सहरसा का सर्वनाश करने लगी तो 20 अगस्त को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया और कोसी को बांधने, उसे नियंत्रित करने का निश्चय किया।
3: कोसी नदी नेपाल स्थित वराह क्षेत्र, कुसहा और चतरा स्थानों से होती हुई भारत में बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत वीरपुर और भीमनगर स्थानों पर उतरती है।
4: भारदा यानी भारदह नेपाल राज्य का गांव है। यह भीमनगर से पश्चिम 8 किलोमीटर दूर कोसी के दाहिने तटबंध पर बसा है। यह निर्मली से 41 किलोमीटर, कुनौली से 16 किलोमीटर पूर्वोत्तर कोण में है।
2: इसी भारदा में बराज बनाने की योजना स्वीकृत हुई। बराज का प्राथमिक कार्य 14 जनवरी 1955 को प्रारंभ हुआ और बराज लगभग 4 वर्षों में पूरा हो गया। 1963 के 31 मार्च को कोसी की धारा मोड़कर बराज के विवर द्वार में बहा दी गई, जिसका विधिवत उद्घाटन 24 अप्रैल 1965 को नेपाल नरेश द्वारा संपन्न हुआ।
3: कोसी क्षेत्र के निवासियों ने शोक नदी कोसी के उत्पीड़न से मुक्ति की सांस ली, नए जीवन की शुरुआत हुई।
4: 1954 में कोसी में भयानक बाढ़ आई थी, जिसका प्रतिक्षण जल रिसाव 8,55,000 घनफुट था। तदनुसार जल निस्सरण की गति प्रति सेकंड 9.5 लाख घनफुट थी। अतः बराज में 56 जल द्वार बनाए गए।
3: सहरसा और पूर्णिया जिलों में बहने वाली कोसी की पूर्वी नहर बराज के नियंत्रण गृह से सटे दाहिनी ओर से निकाली गई है। कोसी की यह पूर्वी मुख्य नहर 7 जल विवर द्वारों से बहाई गई है।
2: इसका प्रत्येक विवर द्वार 40 फीट चौड़ा है और नहर अपने उद्गम स्थान पर 360 फीट चौड़ी है। इस पूर्वी नहर की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है, जिससे 5 बड़ी शाखा नहरें निकाली गई हैं। फिर इन 5ों से

0: उपस्थित किया था।
1: चमदानियों में मधुबनी जिले के पलवार ग्राम के निवासी 75 वर्षीय श्री घनानंद झा और सहरसा के एक प्रमुख समाजसेवी श्री वैद्यनाथ मेहता आज भी साक्षी हैं। यादों के पन्ने खोल रहे हैं श्री वैद्यनाथ मेहता।
2: जनसहयोग का उपलब्ध यही हुआ कि जमीन लोगों ने स्वतः दिया। आपको तजुब लगेगा कि जिनकी जिनका घर जिनकी संपत्ति बांध के भीतर में पड़ती थी और अभी है, वो जानते थे कि कोसी के तटबंध हो जाने के बाद कोसी की सारी विभीषिकाएं तटबंध के भीतर में रहेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने सर पर मट्टी काट करके जनसहयोग में श्रमदान किया। बांध उसी साल शुरू हो गया 14 जनवरी 1955 को, और श्री बाबू के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था।
3: पश्चिमी तटबंध बराज के पश्चिमी किनारे पर स्थित भरदा से आरंभ होता है कनौली तक सहरसा जिले में, आगे हरपुर डगमरा आदि पार करता मधुबनी जिले में प्रवेश करता है।
4: तटबंध के दाहिने किनारे मधुबनी जिले के बाजूबंद बनगांव और भुथा गांव मिलते हैं। वहां से तटबंध निर्मली तक आता है।
5: निर्मली से 12 किलोमीटर पर स्थित डुमरा गांव के निवासी, जहां पहले केवल पटुआ की खेती करते थे, उन्हें पटुआ का साग मयस्सर होता था मड़ुआ की रोटी के साथ, लेकिन अब तो मन चाही फसल उगाने लगे हैं, बाढ़ का कोई डर नहीं। श्री बच्चेलाल मिर्धा एक छोटे किसान के शब्दों में,
6: हमरा सबका अधिकतर धान किछ गरमा किछ जल्दी किछ मरुआ ये फसल हमरा सबका हुई है।
4: डुमरा गांव के ही श्री सीबू राउत,
7: धान गहूँ जल्दी गरमा मरुआ ये फसल सब उपजावे छे हमरा का।
3: वहीं पास ही एक बड़ुआर गांव है, बड़ी बस्ती है। आप हैं वहां के किसान श्री रामचरित्र पासवान।
8: कोसी बांध भेला से हमरा सबके बहुत सुख सुविधा है। ऐ सब पहिने हमरा सबके सुगर जानवर ये सब बहुत तंग करी छले है, एकोटा फसल नहीं हुआ दे छले है। जहिया से बांध भेल है तहिया से हमरा सबके बहुत सुख सुविधा है, और वो जानवर जते छले से एकोटा जानवर आब नहीं एठिन है।
4: वहीं बाजूबंद के पास ही तटबंध पर स्थित विश्वकर्मा मोड़ है। यहाँ के खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, तो कुछ घर जाने के लिए पड़ोसियों का रास्ता देख रही हैं। कोसी गीत मानो रस बस गया है।

0: कोसी बराज और तटबंधों के पहले तथा बाद की स्थिति बताते हुए नेपाल स्थित सप्तरी जिला पंचायत के सभापति श्री सुरेंद्र झा।
1: जब तक कोसी प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं था तो पूरे चतरा से लेकर के और वीरपुर तक पूरा जंगल में और बालू ही बालू था, लेकिन कोसी प्रोजेक्ट के होने से और पश्चिमी तटबंध हो जाने के कारण आज चौतरफी विकास हुआ है और हम लोग काठमांडू काकरभिटा से काठमांडू सीधे पहुंच जाते हैं। ये भारत और नेपाल का प्रतीक जो बैरेज है उससे दोनों देश को ज़्यादा ही ज़्यादा फायदा हुआ है।
0: खेती बाड़ी की चर्चा करते हुए श्री झा बता रहे हैं,
1: पहले तो वही जंगले जंगल और बालू, खास करके लोग पाट उपजाते थे यहाँ भी और इंडिया के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी यही खेती था, लेकिन कैनाल के चलते आज सब जगह हरियाली हरियाली है, धानमय हो गया है और लोग आज कोई भी हो गरीब से गरीब आदमी भी दोनों टाइम चावल खाता है, ये कोसी प्रोजेक्ट का ही देन है।
2: विनोद जी, देख रही हूँ मशीन और मनुष्य ने कोसी की विकराल धारा को सिमट कर बराज के सीमित द्वार से बहने के लिए विवश कर दिया है।
3: शोभा जी, जान लीजिए कि कोसी नहरों और तटबंधों से बिहार के पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा जिलों को बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई सुविधा मिली, तो नेपाल के अंतर्गत बड़े भूभागों को भी पटवन की सुविधा तथा बाढ़ से सुरक्षा मिली। नेपाल के चतरा, धरान, विराटनगर, दुब्भी, इनरवा और रंगोली आदि क्षेत्रों की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई संभव हुई।
4: भारत सरकार ने चतरा नहर, बिजली घर, अस्पताल, स्कूल, सड़कें आदि निर्माण कर नेपाल को उपहार स्वरूप प्रदान किए
0: और इस प्रकार बिहार और नेपाल के करोड़ों

0: किसानों ने शोक नदी कोसी के उत्पीड़न से मुक्ति की सांस ली।
1: नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा की चर्चा करते हुए बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री राम नरेश प्रसाद सिन्हा,
2: 65 से पूर्वी नहर प्रणाली से सिंचाई की सुविधा भी दी जाने लगी थी और उसके बाद से इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है और इस क्षेत्र का जो कायाकल्प हुआ है, इसकी कल्पना केवल वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने कोसी में शुरू में 1954 से ही काम किया हो। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं एक उन लोगों में से हूँ जो कि कोसी के शुरुआती दिनों में ही यहाँ आया था।
3: 20-25 वर्षों तक नहरों से समुचित सिंचाई हुई, किंतु अब पटवन में बाधा होने लगी और तटबंध टूटने फूटने लगे, कारण बताते हुए अभियंता प्रमुख श्री सिन्हा।
2: जहाँ तक नहरों के सवाल है, नहरों भी की पूर्ण क्षमता के अनुसार सिंचाई उपलब्ध नहीं करा पाई जा रही है। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि कोसी नदी में इतना अधिक सिल्ट आता है कि किनाल सब जगह सिल्ट से भर गया है। किनाल, मुख्य नहर, वितरण प्रणाली सभी में सिल्ट का इतना अधिक जमाव हो गया है कि नहरों की जो क्षमता थी वो क्षमता काफी कम हो गई है।
0: कोसी बहुधा 35 वर्षों पर अपनी धारा बदलती रही है। मुख्य कारण मुहाने पर बलुआही मिट्टी का भारी जमाव।
1: जब कभी कोसी ने अपना धारा मार्ग बदला तो तबाही के दिन दिखा दिए। बाढ़ का रोग शोक फैला दिया, फसलों को, गांव बस्तियों को बर्बाद कर दिया।
3: किंतु बराज बना, तटबंध बने, नहरें बनी तो बाढ़ सुरक्षा मिली, लेकिन बलुआही मिट्टी नहीं रुक सकी, क्योंकि मिट्टी और कंकड़ियों से निर्मित पहाड़ों के दरमियान कोसी गुजरती उतरती है और संग लाती है बलुआही मिट्टी का अंबार। कोसी योजना मुख्यतः बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनी थी और अभी तक योजना कारगर साबित हुई, किंतु कोसी नदी द्वारा सिल्टिंग की समस्या ने पटवन व्यवस्था पर चोट करना शुरू कर दिया है। कोसी की तुलना चीन की वांगो नदी से की गई है, जो अपने वेग में हर साल 10 सेंटीमीटर सिल्ट लाती है और चीन के अभियंता प्रत्येक 10 वर्ष पर किनारों को 1 मीटर उठाते रहते हैं, फिर उनका तटबंध भूकंप प्रूफ है।
0: पूर्णिया सिंचाई प्रमंडल के प्रभारी श्री शिवशंकर सिन्हा कोसी नहरों से सिल्ट हटाने की बात के साथ साथ कुछ अन्य उपाय बता रहे हैं।
4: किसान को भी अपने क्रॉप पैटर्न्स, फसल का जो फसल लगाने और बोने का, काटने का जो समय है उसको बदलना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि नदी सिल्ट लाती है प्रायः बाढ़ के समय में। असल नहर को उस समय अगर हम लोग बंद कर छोड़ दें और जो वर्षा होती है उससे किसान अपने खेत में फसल लगावें और काटें, और जब नदी में सिल्ट नहीं आता, नदी जब सिल्ट नहीं लाती है उस समय नहर का संचालन करें और वे किसान अपने क्रॉप पैटर्न्स को बदलें और उस समय उस फसल को लगाएं, हाई यील्डिंग बैलेंस की वैरायटी का फसल लगा दें, जैसे केला लगाया जा रहा है और बहुत ऐसा क्रॉप्स है जिसको उस समय लगाया जाता है जिस समय नदी में सिल्ट नहीं आती है, उस समय नहर में हम सिल्ट फ्री वाटर दे सकते हैं।
1: मिस्टर बुकनन एक प्रसिद्ध सर्वेक्षक जिसका समय 1809-1810 रहा है, उसने अपनी पूर्णिया रिपोर्ट में कोसी धाराओं की गतिविधियों का प्रमाणिक ब्यौरा उपस्थित किया है।
3: मिस्टर बुकनन के अनुसार सन 1704 से 1735 तक कोसी सौरा नदी की धारा से मिलकर फारविसगंज, रजोखर, गढ़बनैली, पूर्णिया और कटिहार होकर मनियारी के पास गंगा में मिलती है।
0: 1737 में ये सौरा धार से पश्चिम हट गई। 1770 में ये और पश्चिम खिसकी, सरसी, रंगपुरा होते हुए काढ़ा गोला आकर गंगा में गिरने लगी।
1: 1807 से 1838 तक ये धमदाह होते हुए कुरसेला में गंगा से मिलती थी। फिर 1875 से 1892 तक कोसी श्रीपुर, मुरलीगंज और प्रतापगंज होकर कुरसेला में गंगा से संगम करने लगी।
3: 1922 से 1937 तक यह भपटियाही, सुपौल, नौहट्टा और वनगांव होकर बहने लगी। 1951 में भी कोसी यहीं प्रवाहित थी। कोसी युगों से सहरसा और पूर्णिया में बिखरी हुई केश राशि की तरह विविध धाराओं में बटती, मनमाने ढंग से बहती रही। यह भाव लोक जीवन में कीट बनकर फूट पड़ा।

0: सुपौल से पश्चिम होकर आगे दक्षिण में जो दो धाराएं फूटती हैं उनमें पश्चिमी धार का नाम पुरैन है। इसी पुरैन धार के किनारे कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं।
1: सुपौल नगर के दक्षिण कर्णपुर स्थान, कहते हैं अंग देश के राजा दानवीर कर्ण का ये कभी प्रसिद्ध नगर था। आगे नौहट्टा मुगल कालीन नगर है।
2: पुरैन धार आगे धरहरा, चंद्रायन और महिषी को छूती बहती थी। महिषी यानी प्राचीन माहिष्मती ग्राम, जहां महान विद्वान मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था।
1: कहते हैं जब शंकराचार्य महिषी यानी माहिष्मती पहुंचे तो उन्होंने एक पनिहारिन से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। पनिहारिन ने संस्कृत में उत्तर दिया,
3: जगत ध्रुवम स्यात् जगदत ध्रुवम स्यात् कीरांगना जत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन मंडन मिश्र धाम।
0: शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पत्नी भारती की मध्यस्थता में हुआ। अंत में मंडन मिश्र ने पराजय स्वीकार ली और शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर वे सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: इसी महिषी ग्राम में रुद्र तारा देवी का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है और पास ही है एक ऐतिहासिक बौद्ध काल की स्मृतियों को समेटे ग्राम वनगांव। मध्यम निकाय और महाबग्गो के अनुसार भगवान बुद्ध अपनी 1200 शिष्यों के साथ अंग देश से चारिका करते हुए यहाँ पधारे थे। अंगुत राय का यही आपन निगम है।
2: मिथिला प्राचीन काल से गौरवान्वित रहा है। यहाँ की बालिका बबीता और पुष्पा को वैसे तो देश की तमाम नदियों से प्यार है, किंतु यहाँ के जल से कुछ विशेष लगाव है लोकगीत के स्वर में।

0: पूर्णिया का एक विशेष इतिहास रहा है। कहावत है, जहर खा न माहुर खा, मरना हो तो पूर्णिया जा। निसंदेह पूर्णिया इसे कभी चरितार्थ करता था, किंतु कोसी द्वारा बराबर धारा बदलने के कारण कभी दलदल तो कभी बालू के अंबार लगे, और जब धारा बदली तो फसलों का लहलहाता समुद्र बिहसता दिखा।
1: तभी तो पूर्णिया के विभिन्न मेले सुप्रसिद्ध हैं। फॉरबिसगंज का मेला, गुलाबबाग का मेला, मदनपुर का मेला, खबासपुर का मेला, और भी कई मेले जो समृद्धि के प्रतीक थे।
2: साहित्य सर्जना में भी पूर्णिया पीछे नहीं रहा। पार्थी परिकथा, मैला आंचल आदि आंचलिक उपन्यासों तथा कथाओं के अमर लेखक स्वर्गीय श्री फणीश्वरनाथ रेणु, नाटककार और कवि स्वर्गीय द्विजदेनी यानी पंडित रामदेनी तिवारी, विद्वान आलोचक और लेखक स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु तथा अनूपलाल मंडल सरी के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेंगे।
1: आज भी साहित्य साधना में निरत पूर्णिया के 80 वर्षीय कवि श्री नारायण वर्मा और 75 वर्षीय श्री तेज नारायण, कमला प्रसाद बेखबर आदि जाने अनजाने बहुत सारे कवि और साहित्यकार हैं।
0: यानी कौशिकी की तिब्बत की भूमि से आरंभ और गंगा संगम तक की ये पूरी कहानी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जीवन वृतांत के अनेकों परिच्छेदों की तरह इसकी अनेक धाराएं लुप्त हो गई हैं या गौन पड़ गई हैं। कोसी के सभी पुराने परिच्छेद पुरानी पांडुलिपियों की तरह जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और कुछ तो नष्ट हो गए हैं।
2: कोसी हिम पर्वतमालाओं से उतरकर नेपाल के पर्वतों के बीच बहती, मचलती, उछलती, वीरपुर, भीमनगर और सहरसा पूर्णिया के क्षेत्रों को सींचती, 307 किलोमीटर

0: दूरी तय करती कटिहार जिले के कुरसेला स्थान के पास थोड़ा उत्तर मुड़कर गंगा से संगम करती है, जिसके मध्य में एक बड़ा द्वीप है गोवराही दियारा। कोसी संगम के बाएं भाग में पूरब की ओर काढ़ागोला और उसके पूरब कांतनगर है।
1: युगों पूर्व राजा भगीरथ ने जहां अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को धरती पर उतारा था, वहां पुरुषार्थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने करोड़ों संतरस्त जनता के कल्याण हेतु कोसी के अभिशाप को वरदान में बदल दिया। कोसी धारा जनजीवन के कल्याण के लिए बहने लगी कोसी धारा।
2: कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी दिव्या पुण्योदकारम्या हिमवंतम उपाश्रता लोकस्य हित कार्यार्थे प्रवृत्ता भगिनी मम

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि शिव पार्वती विवाह के बाद भी शिव पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। व्याकुल देवता एक बार फिर प्रभु शिव शंकर की शरण में पहुंचे। महादेव ने उन्हें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज दिया। अत्यंत तेजस्वी और तापमय होने के कारण देवता उसे स्वीकार नहीं कर पाए। ये बीज निर्मल शीतल गंगा को सौंप दिया गया। इससे देवी पार्वती बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक दिव्य बालक उत्पन्न किया और उसका नाम रखा गणेश। प्रस्तुत है इससे आगे का प्रसंग। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, बालक गणेश को माता पार्वती ने दिव्य छड़ी देकर द्वार पर पहरा देने को कहा। वे तुरंत द्वार पर जाकर सजग प्रहरी बनकर खड़े हो गए।
2: फिर क्या हुआ महाभाग सूत जी?
1: शिव जी ने नंदीश्वर को पार्वती जी के भवन पर भेजा ये जानने के लिए कि स्नान में विलंब का क्या कारण है। देवता उनके दर्शनों को आतुर हैं। नंदीश्वर वहां पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर गणेश जी को डटा पाया।
3: अरे, माता पार्वती के भवन द्वार पर यह अद्भुत अपरिचित बालक कौन खड़ा है? पूर्णता माता की ही प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रहा है। चलकर पूछता हूं, तुम कौन हो बालक और यहाँ क्या कर रहे हो?
4: मैं पार्वती गण हूँ और उनके भवन द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। वृषभराज, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं?
3: मैं भगवान शिव का प्रथम गण नंदी हूँ और माता पार्वती के लिए संदेश लाया हूँ।
4: परंतु आप अभी भीतर नहीं जा सकते नंदीश्वर, माते स्नान कर रही हैं।
3: तो बालक राज, आप ही उन्हें संदेश पहुँचा दें।
4: हम भीतर नहीं जा सकते, माता पार्वती का आदेश है कि बिना अनुमति के कोई भीतर ना आने पाए।
3: हट मत करो बालक, मत करो हट, संदेश अति आवश्यक है।
4: हम हट नहीं कर रहे हैं, मात्र माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
3: तो हम भी देवाधिदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं बालक।
4: तो जाइए, अपने देवाधिदेव से कह दीजिए कि गणेश के रहते माता की अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता।
3: ठीक है, हम जा रहे हैं बालक। तुम्हारी इस हट का परिणाम अच्छा ना होगा अच्छा।
5: पार्वती गण? अनायास ये कौन सा पार्वती गण उत्पन्न हो गया?
3: जो भी हो देवाधिदेव, वो बालक है अति तेजस्वी और बलशाली।
5: इतना बलशाली कि हमारे प्रथम गण स्वयं नंदीश्वर उससे भयभीत होकर हमारी शरण में आ पहुंचे।
3: उस बालक के शरीर में इतना बल ना भी हो जितना हमारे शरीर में है, परंतु भगवान वो बहुत बड़े हट बल का स्वामी है।
5: नंदीश्वर,
3: भगवान
5: उस बालक को ये हट बल देवी पार्वती ने ही दिया है। नंदीश्वर,
3: आज्ञा प्रभु।
5: जाओ, समस्त गणों के साथ वहां जाओ। पहले प्रेम पूर्वक प्रयास करके उस बालक को द्वार से हटा दो। यदि फिर भी ना माने तो बल प्रयोग करो। वो अकेला गण इतने सारे गणों के आगे क्या कर पाएगा? यदि देवी पार्वती का यही हट है तो हमारा भी हट है। देवी पार्वती को अपने हठ का फल अवश्य मिलेगा। जाओ नंदीश्वर, आवश्यकता पड़े तो शिव आज्ञा से युद्ध भी करना।
3: जैसी आज्ञा देवाधिदेव। आओ शिव गणों, आओ। अरे नादान हठी बालक, प्रेम की भाषा तू संभवता नहीं समझता। हमारे मार्ग से हट जा, हम सभी श्रेष्ठ शिव गण हैं। तुझे भी ये गण मान रहे हैं, इसलिए तुझे अब तक छोड़ रखा है।
4: मैंने भी कहा था ना, मैं पार्वती गण हूँ। सभी गण क्षमता में एक दूसरे के समान हैं। तुम शिव के द्वारपाल हो, मैं पार्वती माता का द्वारपाल हूँ। तुम शिव की आज्ञा मानो, मैं माता की आज्ञा मानूंगा।
3: आक्रमण आक्रमण करो, आक्रमण।
6: गणों ने बालक गणेश पर आक्रमण कर दिया। चल देवी को सूचना दे।
4: अरे अरे रुक विजया, देख तो पार्वती पुत्र शिवगणों की क्या दुर्गति बना रहे हैं।
6: अरे शिवगण परास्त होकर भाग खड़े हुए हैं।
4: अरे देख तो सब देवतागण दूर खड़े मंत्रणा कर रहे हैं।
6: जया, स्वयं ब्रह्मा जी इधर आ रहे हैं।
7: वत्स पार्वती गण,
4: इतने सारे बलशाली शिवगण तो मुझसे परास्त हो गए, अब क्या आप अकेले मुझसे युद्ध करेंगे?
7: नहीं पुत्र, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शांति स्थापित करवाने आया हूँ।
4: पहले तो एक बालक से युद्ध करते हैं, फिर भयभीत होकर शांति की बात करते हैं। कैसे देवता हैं आप? जाइए कह दीजिए अपने शिव से, मैं माता की आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं हटूंगा।
6: अरे देख तो विजया, ब्रह्मा जी भी अपना सम्मुख लेकर लौट गए।
4: तुम धन्य हो पार्वती पुत्र, आगे भी ऐसे ही डटे रहना। तुम्हें अपनी माता के सम्मान को और ऊंचा करना है।
6: अरे देख तो विजया, भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी देवता इधर ही चले आ रहे हैं।
4: आप निश्चिंत रहे देवियों, मुझे मेरी माता का आशीर्वाद प्राप्त है, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आओ देवता आओ, मुझ पर अपनी बल परीक्षा कर लो।
8: आइए शिवगण, चल के देखिए तो।
9: चलिए।

0: सूर्यदेव, हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व देखे हैं, परंतु इस गणेश्वर जैसा पराक्रम किसी में नहीं है।
1: हाँ इंद्रदेव, हाँ। अरे ये क्या, इस बालक ने तो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं।
0: सूर्यदेव, अनर्थ हो जाता है।
1: वो कैसे इंद्रदेव?
0: स्वयं भगवान शिव शंकर क्रोध में उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया है।
1: परंतु इस वीर बालक ने आज के एक वार से ही महादेव का धनुष भूमि पर गिरा दिया है।
0: क्रोधित महाप्रभु ने अपना त्रिशूल उठा लिया है।
2: हे दृष्ट बालक, तूने शिवाज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किया है, ले परिणाम भुगत।
3: महाप्रभु, ये क्या किया? अपने त्रिशूल से पार्वती पुत्र का सिर ही काट डाला।
1: पार्वती पुत्र
3: विजया, मैं क्या देख रही हूँ? मेरे प्रिय पुत्र का प्राणहीन शरीर अपने सिर से अलग हुआ पड़ा है। ना कोई कंपन, ना कोई स्पंदन। पुत्र, अभी तो मैंने तुझे जी भर कर देखा भी ना था, मात्र तू का एक बूंद जल तुझ पर छिड़का भी ना था। अरे देवताओं, ये कौन सा बैर निकाल रहे हो मुझसे? पूर्व जन्म में पति से बिछो कर आया और इस जन्म में पहला पुत्र बीज मुझसे छीन लिया।
0: देवी, वो तारकासुर
3: इंद्र, तुम्हें अपने सिंहासन से इतना मोह है कि उसे बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे नाथ भक्त वत्सल है, उन पर भक्तों का अधिकार मेरी अपेक्षा कहीं अधिक है, इसीलिए मैं बीज दान के उपरांत भी शांत रही। परंतु मेरे इस निर्बोध बालक ने किसी को क्या हानि पहुंचाई थी तो उसके पिता के हाथों ही उसका वध करवा डाला। दंड मिलेगा, तुम सबको इसका दंड अवश्य मिलेगा।
1: अरे ये क्या इंद्रदेव, देवी पार्वती पांव पसार कर धरती पर बैठ गई हैं।
0: हाँ, नेत्र क्रोध से रक्तिम हो उठे हैं। वायुदेव,
1: ये तो प्रलय सूचक है।
4: जाओ, जाकर देव सेना में प्रलय मचा दो। देवता, राक्षस, ऋषि जो मार्ग में आए उनका भक्षण कर लो।
5: जैसी आज्ञा जगदम्बे।
1: विधात, देवी पार्वती द्वारा उत्पन्न ये 10,000 शक्तियां तो सबको अपना ग्रास बनाती जा रही हैं।
6: हाँ श्री विष्णु हरे, ये तो असमय ही प्रलय कर डालेंगी। महादेवी की आज्ञा से वे सुर, असुर, मानव किसी में भेद नहीं कर रही हैं। शीघ्र ही कुछ उपाय करना होगा, अन्यथा महाप्रभु द्वारा रचित सृष्टि देखते देखते नष्ट हो जाएगी, हम सबका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
7: नारायण नारायण।
1: मुने नारद,
8: आज्ञा विष्णु देवा।
1: शिष्य कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, अपने गुरु को सामने पाकर कुछ शांत अवश्य हो जाता है। और देवी पार्वती तो चिरकाल से आपकी शिष्या रही हैं।
6: हमें विश्वास है पुत्र नारद, इस समय जगदम्बे का क्रोध तुम ही शांत कर सकते हो। हमारे अग्रणी बनकर प्रयास करो,
8: नारायण नारायण। ऐसे विकट समय में प्रयास के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है, विशेष रूप से तब जब स्वयं शिव शक्ति शिवा शक्ति के सम्मुख नतमस्तक हैं। आइए

0: हे देवी, हे पाप नाशिनी, ये जग संहार रोकिए, शांत हो जाइए। स्वयं आपके स्वामी भगवान शिव शंकर आपके क्रोध का ग्रास बनने जा रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा, लक्ष्मीपति विष्णु, सभी देवता, ऋषि और समस्त प्रजा यहां हाथ जोड़े खड़ी है। देवी, इन्हें क्षमा कीजिए।
1: क्षमा देवी, क्षमा, हमें क्षमा करें देवी,
2: क्षमा करें,
1: क्षमा। हे देवेशी, आप ही आदि शक्ति हैं, सृष्टि की निर्माण शक्ति, पालक शक्ति, संहारक शक्ति आप ही तो हैं। आपके कोप से त्रिलोकी विकल हो रही है देवी। परमेश्वरी, हम सबका अपराध क्षमा करें, शांत हो जाएं।
3: देवी पार्वती, आपके अपराधी, आपके दोषी हम हैं। हमारे किए का दंड आप इन्हें ना दें। अपने नेत्र खोलकर देखें देवी, आपके क्रोध से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो।
4: नाथ, ये क्या रीति है? पहले अपराध किया जाता है, फिर क्षमा मांगी जाती है।
3: पार्वती, कुछ अपराध सुनियोजित होते हैं जो अक्षम्य होते हैं, परंतु कुछ अपराध क्षणिक आवेग, क्रोध और मतिभ्रष्टता के कारण हो जाते हैं। दंड के भागी वे भी होते हैं, परंतु प्रलय रूपी मृत्यु दंड के भागी नहीं होते। हमसे, स्वयं शिव से ऐसा ही अपराध हो गया है। दंड स्वरूप हम मौन खड़े अपनी प्रजा का संहार होते देखते भी रहे। अब इसे रोकें पार्वती।
4: देवाधिदेव, ये संहार तभी समाप्त होगा यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और आप सबके मध्य पूजनीय हो जाए। आप सब देवताओं को उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा। वो अग्र पूजा का पात्र बनेगा।
1: देवी पार्वती, त्रिलोकी के सुख के लिए आपने उचित मार्ग ही सुझाया है। हमें स्वीकार है,
5: हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है।
4: ठीक है, तो सर्वप्रथम आप हमारे पुत्र को जीवित कीजिए।
1: देवाधिदेव, आप ही उपाय बताएं।
3: देवगणों, आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें। जो भी जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के धड़ से जोड़ दें, यह पुनः जीवित हो जाएगा।
5: जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा महाप्रभु।
0: वायुदेव, उत्तर में तो ये बीहर स्थित है। यहाँ हमें कौन सा मनुष्य मिलेगा जिसका हम सिर काट पाए? यहाँ तो पशु पक्षी ही होंगे।
6: स्मरण करें इंद्रदेव, महाप्रभु ने कहा था कि जो भी पहला जीव मिले, पशु पक्षी भी तो जीव ही होते हैं ना?
0: अरे, ये तो एक विशाल

0: एक दंत गजराज इस ओर आ रहे हैं।
1: यही हमें सबसे पहले दिखाई दिए हैं।
0: ओ, तो आओ वायुदेव, महादेव की आज्ञा का पालन करें। इस गज का सिर काटकर हम ले चलते हैं।
1: हाँ,
0: है? चलो तो आइए।
2: ब्रह्मदेव।
3: आज्ञा महाप्रभु।
2: इस गज मस्तक को बालक के शरीर से जोड़ दें।
3: अभी ले महादेव। हाँ, ये लीजिए, गजमस्तक बालक शरीर से जुड़ गया।
2: विष्णुदेव।
3: जी दयानिधान।
2: अब अभिमंत्रित जल इस बालक के पूरे शरीर और मस्तक पर छिड़किए।
3: जैसी आज्ञा महाप्रभु। देवाधिदेव, आपके जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज इस बालक के शरीर में प्रवेश करें।

0: अरे चमत्कार चमत्कार, देखो देखो तो इंद्रदेव, बालक जीवित हो उठा, जीवित हो उठा।
1: हाँ वायुदेव, इसमें शिव तेज ने प्रवेश किया है। अरे ये तो पहले से भी अधिक तेजवान और बलशाली प्रतीत हो रहा है।
2: देख तू विजया, पार्वती पुत्र का ये गजमुख कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। हाँ जया, यहाँ उपस्थित सभी देवताओं से कितना भिन्न, कितना आकर्षक लग रहा है पार्वती नंदन। और देख तो इसके शरीर का रक्त वर्ण कैसी विलक्षण प्रभा फैला रहा है। देवी देवी पार्वती, नेत्र खोलिए, गिरिजा नंदन जीवित हो उठे हैं। पुत्र गणों में श्रेष्ठ गणेश, आओ मेरे गले लग जाओ पुत्र, आओ पुत्र गणेश आओ।
3: माते,
2: तुझे जीवित देख मेरे नेत्र तृप्त हुए, मेरा हृदय तृप्त हुआ पुत्र, मेरा मातृत्व तृप्त हुआ।
4: पुत्र गणेश आओ, हमारे निकट भी आओ।
2: माते जाओ पुत्र, ये तुम्हारे पिता स्वयं भगवान शिव शंकर हैं।
3: आप ही के गणों को तो मैंने भवन में प्रवेश करने से रोका था,
4: और उन्होंने आपसे कहा था कि वे मेरे शिव के गण हैं।
3: परंतु ये तो नहीं कहा था कि शिव हमारे पिता हैं। माता ने तो आपका नाम शंकर बताया था, अन्यथा हमसे इतनी बड़ी धृष्टता ना होती। हमारी बालक बुद्धि में तो मात्र माता की ही आज्ञा समाई हुई थी। हे देवताओं, अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कर दें।
5: हे पार्वती पुत्र गणेश, आपको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। मैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपका मुख सिंदूरी रंग से दमक रहा है, अतः मनुष्य आपकी सिंदूर से ही पूजा करेंगे। हृदय से आपकी आराधना करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस कारण आपका एक नाम सिद्धि विनायक होगा।
6: आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मैं विष्णु आपको आशीर्वाद देता हूं कि गज मस्तक होने के कारण आप गजानन भी कहलाएंगे।
2: मैं विष्णु पत्नी लक्ष्मी वरदान देती हूँ, जब तक आप किसी का शुभ नहीं सोचेंगे उसे मुझसे लाभ प्राप्त नहीं होगा।
7: मैं ब्रह्मा पत्नी सरस्वती आपको आशीर्वाद देती हूँ कि समस्त जगत में आप सा ज्ञानी और गुणी और कोई ना होगा।
4: पुत्र गणेश।
3: आज्ञा पिताजी।
4: आओ पुत्र, हमारी गोद में बैठो, तुम हमारे दूसरे पुत्र हुए।
3: जैसा आपका आदेश।
4: पुत्र गणेश, आज से हम सब देवता तुम्हें सर्वाध्यक्ष घोषित करते हैं। तुम आज से अग्र पूज्य हो। समस्त जगत के जीव सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करेंगे। यदि वे तुम्हारी पूजा पहले ना करके मेरी, ब्रह्मा या विष्णु की पूजा करते हैं तो वो पूजा सफल नहीं होगी।

0: पार्वती नंदन, अब आपका विरोध कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं शक्ति के पुत्र हैं। किसी के भी अस्त्र शस्त्र आप तक पहुंचने से पूर्व ही खीण पड़ जाएंगे। ये मेरा ब्रह्मा का आपको वरदान है।
1: गणेश्वर, मैं विष्णु घोषणा करता हूं, आपका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। अतः हर वर्ष आज का दिवस गणेश चतुर्थी के रूप में ही मनाया जाएगा। संसार में सुखों की कामना करने वाले यदि आज के दिन स्वच्छ हृदय से आपकी वंदना करेंगे तो उन्हें मनोवांछित फल मिलेगा।
2: उत्तम, अति उत्तम। क्यों वायुदेव?
3: हाँ इंद्रदेव, आज का दिवस अति मंगलकारी दिवस है।
4: देवताओं, शंख नाद से इस दिवस का स्वागत करो। किन्नरों, वाद्य वृंद प्रस्तुत करो। अप्सराओं, अपने नृत्य से इस महा उत्सव को शोभायमान करो।

0: आहा, महाभाग सूची, कैसा अलौकिक मनोरम परम आनंददायक दृश्य रहा होगा।
1: हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी और पार्वती जी को तो विशेष आनंद पहुंचा। महादेवी ने कोप त्याग दिया, सब सुख पूर्वक अपने धामों को लौट गए।
0: तो परम ज्ञानी सूत जी, ये थी गजानन गणेश की उत्पत्ति की कथा। परंतु सूत जी, देवाधिदेव महादेव ने अपने पुत्र की उत्पत्ति का जो बीज गंगा माता को सौंपा था, उसका क्या हुआ?
1: शौनक जी, ये प्रसंग मैं विस्तार से आपको अगली भेंट पर सुनाऊंगा।
0: आप जैसा उचित समझें सूत जी।
2: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के 15वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक से लिया गया था।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन अर्चन भजन कीर्तन नाम सुमिरन उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की सातवीं कड़ी।

0: आत्मशक्ति को राम नाम का भरोसा बार बार देकर पवन सुत ने घोर गर्जना की और हवा में उछल पड़े। उनके चरणों की धमक से वो पहाड़ तुरंत पाताल में धस गया। परम भक्त योगीश्वर पवन तनय योग शक्ति से अपना भार संभाल कर निरंतर उड़े चले जा रहे थे। उनके साहस पर रीछ कर समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा,
1: हे पर्वतराज, तुम उठकर वायुनंदन को अपना आधार दो।
2: सुंदर प्रस्ताव है महासागर, लो मैं उठता हूं। हे रामदूत महावीर,

0: तुम्हारी असीम भक्ति और शक्ति को धन्य है। आओ क्षण भर मेरे ऊपर रुक कर विश्राम कर लो, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा।
1: मेरी दया विचारने वाले पर्वत शिरोमणि, आपको प्रणाम है। आपकी प्रेम पूर्ण निमंत्रण का मान रखने के लिए ये लीजिए, मैं अपने हाथ को क्षण भर के लिए टिकाए लेता हूं। किंतु पर्वतराज, राम काज कीन्हे बिना वो ही कहां विश्राम।
0: हे वज्रांग, तुम्हें धन्य है, प्रभु कृपा से तुम्हें अपने कार्य में निश्चय ही सिद्धि मिलेगी।

0: ये वानर निश्चय ही परम साहसी और वीर है। देखो वायु तरंगों पर कैसे उड़े जा रहे हैं। परंतु जिसके पुत्र ने देवराज इंद्र को जीतकर अपने वश में कर लिया और सारे देवगण जिस दशानन से थरथर कांपते हैं, क्या उसके सम्मुख भी ये ऐसी वीरता दिखा सकेंगे? क्या ये रामदूत बनने के सचमुच योग्य हैं?
1: उचित है कि हम सर्पों की माता सुरसा देवी से इस बानर की परीक्षा लेने के लिए गए।
0: ठीक कहा, आओ चले
1: चले। हे माता, प्रभु का दूत बनकर एक बानर लंका जा रहा है, क्या तुम उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकोगी?
2: अवश्य, मैं अभी जाती हूँ। आज सुरन मोहे दीन आहारा।
3: हे यही जननी सुरसा माता, दया करो, राम काज करी फिर मैं आवऊ, सीता की सुध प्रभु ही सुनावूं, तब तुम बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मुझ जान दे माई।
2: नहीं, मैं तुझे यहां से एक डग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तू मेरा आहार है।
3: हे माता, मेरा विश्वास करो, जगदम्बा सीता की खोज करके मैं रघुनाथ जी को उनका कुशल समाचार दे आऊं, तब तुम मुझे खा जाना।
2: नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अभी के अभी लील जाऊंगी, मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगी।
3: यदि ऐसा भी है तो फिर देर क्यों करती हो, खा क्यों नहीं लेती मुझे? सुरसा ने अपना विकराल मुख योजन भर लंबा फैला लिया, मैं भी तो योजन लंबा हुआ जाता हूँ। जैसे जैसे तू अपना मुख फैलाती जाएगी, मैं भी अपनी देह विशाल करता जाऊंगा। नाग माता अब अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, इसलिए क्यों न मैं इसकी विशाल मुख में लघु रूप धर कर घुस जाऊं और इस प्रकार नाग माता की इच्छा पूरी करके चटपट अपने रास्ते लगूं।
2: अरे हनुमान ने तो बड़ी चतुराई की, कितना छोटा रूप बनाकर इसने विद्युत गति से मेरे मुख में प्रवेश किया और एक चक्कर लगाकर बाहर भी आ गया।
3: हे माता, मैंने तुम्हारे मन के अनुकूल कार्य किया, आप कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दो।
2: हे अंजनी कुमार, रावण के भय से सदा कांपने वाले देवगण तुम्हारे बुद्धि बल को परीक्षा की कसौटी पर परखना चाहते थे, तुम उस कसौटी पर खरे उतरे। मोहि सुरन जेहि लाग पठावा, बुद्ध बल मर्म तोर मैं पावा, राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान।
4: नाग माता के आशीर्वचनों को विनीत भाव से ग्रहण कर हृदय में राम का ध्यान करके पवनसुत बड़े वेग से उड़े। समुद्र के ऊपर से जाते हुए उन्हें छायाग्राही राक्षस मिला। राक्षस ने एक बड़ा आहार उड़ते हुए देखा, उसने लपक कर मारुति की छाया पकड़ ली। पवन कुमार ने अपने मार्ग में आई हुई ये छोटी सी बाधा क्षण मात्र में ही दूर कर दी। पवनसुत समुद्र पार करके सीधे लंका पहुंचे।

0: राजधानी की सुरक्षा के निमित्त कड़े पहरे का प्रबंध देखकर कपींद्र केसरी किशोर छोटे से मच्छर के समान सूक्ष्म आकार धारण करके चतुराई से रावण की नगरी में प्रवेश करने चले और सब पहरेदारों की दृष्टि तो चूक गई, किंतु द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसकी ऐसी माया थी कि कोई चोर उससे छिप नहीं सकता था। राक्षसी ने उन्हें आकाश में ही घेरा और बोली,
1: जा नहीं नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
2: अच्छा हुआ अपने पाप का फल भुगतती लंकनी लहू गिराती हुई धरती पर लुढ़कती हुई गिर पड़ी।
1: हे महावीर, ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे यही चिन्ह बतलाया था कि बंदर के मारने से जब तू व्याकुल हो उठे तब समझ लेना कि लंका का नाश निकट आ गया है। अब मैं धन्य हुई तात प्रविसी नगर की जय सब काजा, जितई राखी कौसलपुर राजा।
2: लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
3: राम राम श्री राम श्री राम।
2: अरे
3: श्री राम,
2: ये तो सज्जन है।
3: श्री राम,
2: इसी जान पहचान करनी चाहिए।
3: राम राम।
2: अच्छा, तू विप्र का रूप धारण कर इससे मिलता हूँ। हे भगवत भक्त, अपने द्वार पर खड़े विप्र को देखो।
3: विप्रवर, विप्रवर अपना वृत्तांत तो मुझसे कहें। आपको देखते ही मेरे मन में प्रबल आनंद तरंगे उठ रही हैं। क्या आप भगवान के सेवकों में से कोई विभूति हैं? क्या आप दीन जनों के प्रेमी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और मुझ अकिंचन को बड़भागी बनाने के लिए

0: स्वयं इतना कष्ट करके पधारे हैं? बोलिए बोलिए भगवान, बोलिए आप कौन हैं?
1: मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री राम जी की आज्ञा से भगवती सीता की खोज में यहाँ आया हूँ।
0: हे पवन सुत, आप दया करके हमारी रहनी भी सुनिए। जैसे दांतों में जीभ बेचारी रहती है, वैसे ही हमारा निभाव होता है। हे तात, कभी न कभी तो रामचंद्र जी मुझ अनाथ की भी सुधि लेंगे, मेरा भी उद्धार होगा।
1: भक्तराज विभीषण, मैं तो वानर कुल में जन्मा, प्रकृति से चंचल और सब प्रकार से दीन हूँ। भोर के समय जो हमारा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिले। जब मेरे समान अधम पर भी श्री रामचंद्र जी कृपाल हुए, तब आपकी पुकार पर भी दौड़े आएंगे। अब ये बतलाइए भक्तराज, क्या जगदम्बा सीता जी लंका में हैं?
0: हाँ, यही है।
1: मैं पूरी लंका छान आया, किंतु मुझे उनके कहीं दर्शन नहीं हो सके।
0: वे अशोक वन में है।
1: साधु साधु, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, पता पा जाने पर माता के दर्शन किए बिना आप मुझे चैन नहीं।
2: नाना कौतुक करते हुए कपींद्र अशोक वन जा पहुंचे। कौशल पूर्वक धीरे धीरे वे उस वृक्ष पर पहुंच गए जिसके नीचे जगदम्बा विराजमान थी। हनुमान जी ने देखा, ऐसी गहन करुणा में भी वे राम चरण लीन थी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करही विचार करूं का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खल सीते समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
3: सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पनमोरा, एक बार बिलोक ममोरा।
4: रे नीच रावण, क्या तूने कभी जुगनू के प्रकाश से भी कमलिनी को खिलते देखा है? वो सूर्य से ही संभव है। रे दुष्ट दशमुख, तुझे अभी रामचंद्र जी के बाणों का पता नहीं है। सठ सू नहीं हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही।
3: सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं अभी तलवार से तेरा शीश काटकर इस लीला का अंत ही किए देता हूं।
4: ये तो तू मेरे मन की बात कह रहा है, मैं तुरंत इस संकट से उभर जाऊंगी।
3: सूर्यवंशी राम में भला ऐसी कौन सी विशेषता है जो पुलस्त्यवंशी मुझ दशानन रावण में नहीं है?
4: सुनेगा रे नीच तो सुन। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संचातम। फुलस्ते के समान श्रेष्ठ ऋषिकुल को अपने कुकर्मों से कलंकित करने वाले रे दुरात्मा, विश्वास रख, मेरा वचन निरर्थक न जाएगा। एक दिन मेरे स्वामी तुम्हारे इन सभी शीशों को एक ही बार में उतार डालेंगे।
3: मैं अभी तेरा अंत किए देता हूँ।
5: हे नाथ, समस्त जगत के स्वामी, आप जैसे अजय योद्धा हैं, वैसे ही महापंडित भी हैं। ताजी मंदोत्री की प्रार्थना स्वीकार करें, पर स्त्री की हत्या करना नीति विरुद्ध है। हे नाथ, ऐसा ना करें।
3: ठीक है, ठीक है। सीता, तुझे एक मास और सोचने का अवसर देता हूं।
6: बहनों, मैंने कल रात एक सपना देखा है।
4: क्या देखा सपने में तूने त्रिजटा?
6: मैंने देखा है कि एक बंदर ने आकर लंका को जला डाला है। राक्षस सब मारे गए हैं और हमारे मालिक रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं। उनका मस्तक मुंडा हुआ

0: हुआ है और बीसों हाथ कटे हुए हैं।
1: अरे सच?
0: अरे झूठ थोड़ा ही कह रही हूँ। फिर मैंने देखा कि नगर में रामचंद्र जी के नाम की दुहाई फिर रही है और वो सीता जी को साथ लेकर तथा यहाँ का राज विभीषण को देकर चले गए। फिर मेरी नींद टूट गई। भोर का सपना था बहन, तुम सब जानती हो कि

0: तुम जो सपने की बात सुना रही हो उससे हम सबके मन में बड़ा भय समा गया है।
1: ठीक बात है
0: त्रिजटा, तुम ही उपाय बताओ बहन, ऐसे में हमें क्या करना उचित होगा।
2: मेरे जान में दंड देने योग्य किसी ना किसी भयंकर खोज का बहाना करके तुम लोग इधर उधर हो जाओ। मैं इस बिचारी देवी स्वरूपा तपस्विनी देवी को थोड़ा बहुत धीरज बनाऊंगी।
3: हे स्वामिनी, आपके समान तेजस्वी नारी को अपार दुख में इस तरह डूबा हुआ देखकर मैं बड़ा कष्ट पा रही हूँ। मैं राक्षसी भले ही हूँ पर हरि के चरणों में मेरा असीम अनुराग है। मैं अपनी भरसक सेवा से आपको संतुष्ट करूंगी। मैंने एक सपना देखा था स्वामिनी कि रामचंद्र जी लंका को विजय करके आपको ले गए हैं।
1: अरे न जाने कब क्या होगा त्रिजटा, परंतु ये तो निश्चय है एक मास के अंदर ही वो दुष्ट मेरे प्राण हर लेगा। इन आंखों से मैं अपनी जीवन धन को फिर कभी न दिख सकूंगी।
2: अपने मन को तनिक भी छोटा ना करो स्वामिनी, मेरा भोर का सपना कभी निरर्थक नहीं जा सकता।
1: हे माता, तुम जब इतनी दया दिखला रही हो तो मेरे लिए एक चिता भी बना दो। मैं ये देह त्याग कर अब अपने पति के हृदय में निवास करना चाहती हूँ।
2: अरे नहीं स्वामिनी, आप अपना मन यूं छोटा ना करो।
1: नहीं माता, तुम चिता बनाकर मेरा परम उपकार करो।
2: हे सुकुमारी, अभी ये संभव नहीं है। हम भला रात के समय आग कहाँ पाएंगी। आप धीरज रखें, मैं कल कोई ना कोई उपाय सोचूंगी। अच्छा तो मैं भी अब घर चली जाती हूँ, आप विश्राम करें स्वामिनी।
1: विश्राम? विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर विश्राम का ना आग मिलेगी और ना मेरी पीड़ा ही मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे सुलग रहे हैं, एक मुझ पर भी गिर पड़े तो सारी पीड़ा ही समाप्त हो जाए। पावक मैं ससि सवत न आगी, मानहु मोहि जाने हत भागी। सुने ही विनय मम पिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, तेहि अग्नि जनि करहि निदाना।

0: कैसे आई? इसमें क्या रहस्य है?
1: भगवान श्री रामचंद्र की माया अपार है देवी, उसे कौन जान सकता है?
0: कौन? अरे तुम कौन हो? मेरे कानों में अमृत खोलने वाले, तुम अपना रहस्य क्यों नहीं बताते?
1: राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहां सही दानी?
0: क्या कहा? नरवान रही संग कहो कैसे?
1: माता, आपकी खोज में श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपासर पहुंचे, वहां मैं और सुग्रीव उन्हें मिले। आपने हमी लोगों को देखकर पुष्पक से वस्त्राभूषण फेंके थे, वहीं सुग्रीव और राम जी में मैंने अग्नि को साक्षी देकर मित्रता करवाई। बाली को मारकर श्री राम जी ने सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने आपकी खोज में बानर दूत चारों ओर भेजे, जिनमें से मैं यहां तक आने में सफल हुआ।
0: हे तात, विरह जलधि में डूबती हुई दुखिनी के हेतु तुम नौका बनाए हो। हे पुत्र, अब तुम मुझे देव लक्ष्मण और रघुनाथ जी के समाचार सुनाओ। कोमलचित्त वाले रघुकुल तिलक ने मेरे प्रति ऐसे निठुराई क्यों बरती है?
1: हे माता, जगत के नाथ श्री राम जी भला निठुर कैसे हो सकते हैं?
0: हे नाथ, आप तो ऐसे कोमलचित्त के हैं कि अपने दास दासियों तक को भी कभी प्रसन्न नहीं देख सकते। फिर आपने मुझ दुखनी को ही इस प्रकार क्यों बिसा रखा है? हे प्राणनाथ, क्या तुम्हारे श्याम सुकुमार शरीर को मुझे नाकों से फिर कभी देखने का सौभाग्य मिल सकेगा?
1: माता, आप अधीर न हो, राम जी एक क्षण के लिए भी आपको नहीं बिसार पाए। मैं सच कहता हूं, उनका दुख आपसे दुगना है। लक्ष्मण जी भी यूं तो कुशल पूर्वक है, पर आपके दुख से उन्हें भी अपार दुख है। विश्वास रखें, श्री राम जी दुष्ट दशानन का वध करके शीघ्र ही आपके पास आएंगे।
0: क्या श्री राम जी ने मेरे लिए कुछ भी संदेशा नहीं दिया?
1: ऐसा मत कहे माता। कहो राम वियोग तब सीता, हो को सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनोहु किसानु, काल निशा सम निस ससि भानु, कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जन बरिसा, जी हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविद समीरा, कहे उते कछु दुख घटी होई, काही कहूं यह जान न कोई, तत्तु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। माता, आप धैर्य धारण करें और अपने सेवकों को सदा सुख देने वाली श्री राम का स्मरण करके अपनी ये कातरता छोड़ दें। ये राक्षस पतंगों के समान शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के प्रखर बाणों की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। हे माता, मैं रघुकुल नायक की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आपको इसी क्षण यहां से ले जा सकता हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा प्रदान नहीं की है। हे अंब, विश्वास कीजिए, केवल कुछ ही दिनों की बात है, तीन बंधु दयानिधि सेना समेत यहां आकर राक्षसों का संहार करेंगे।
0: हे पुत्र, तुम्हारी ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर भी मेरा मन शंकित है। भले इन पर्वतों जैसे लंबे चौड़े महाबलशाली राक्षसों से क्या प्रभु जीत सकेंगे? अरे, हनुमान जी ने अपना विराट रूप उद्घाटित किया। कनक भूधराकार शरीरा,

प्राणनाथ की अंगुली में पड़ी रहने वाली जो मुद्रिका यहाँ कैसे आई? शायद ये कोई और मुद्रिका है। नहीं नहीं, ये तो वही है। इस पर उनका नाम भी अंकित है। तब क्या वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति पर ब्रह्म त्रैलोकेश्वर तो अजय हैं। माया से भी ऐसी मुद्रिका नहीं बनाई जा

0: समर भयंकर अति बलवीरा। इनके इस रूप को देखकर मुझे विश्वास होता है कि श्री राम जी अवश्य विजयी होंगे।
1: हे माता, वैसे तो हम बंदरों की बलबुद्धि बड़ी साधारण सी है, पर विश्वास रखिए कि प्रभु की कृपा होने पर एक नन्हा सा सर्प भी अति विशाल काय गरुड़ को खा सकता है।
0: हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के भंडार हो, रघुनाथ की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हे तात, तुमने यहाँ आकर मुझे परम सुख दिया है, तुम्हारा कल्याण हो।
1: माता, मैं धन्य हूँ, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस वाटिका के फल खाकर अपनी भूख मिटाऊं।
0: जाओ तात, सुख से मीठे फल खाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।

0: अपने पुत्र अक्षय कुमार तथा अनेक योद्धाओं का संहार करने वाले वानर के ऊपर अब तो रावण को भयंकर क्रोध चढ़ाया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र महाबलशाली इंद्रजीत मेघनाद को आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से मेघनाद अनेक महाबलशाली योद्धाओं को लेकर हनुमान जी को पकड़ने के लिए चल पड़ा। युद्ध में मेघनाद का रथ टूट गया। इससे मेघनाद और उनके साथियों के क्रोध का वारापार नहीं रहा। सब के सब एक साथ हनुमान जी पर टूट पड़े, किंतु महावीर ने राम कृपा से एक एक के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान के प्रहार से इंद्रजीत को भी क्षण भर के लिए मूर्छा सी आने लगी। अंततः मेघनाद ने उनसे माया युद्ध करना आरंभ किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मान्यो महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहु मारा, परतिहु बार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मुरछित भयो, नाग पास बांधे सि ले गयो। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। वहां देव दनुज नर किन्नर सब हाथ बांधे खड़े थे। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और बोला,
1: कवन तय कीसा कहके बर घाले से बन खीसा, कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही मारे निश्चर के ही अपराधा, कही सट तो ही न प्राण कहीं बाधा।
2: सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया, जाके बल विरंच हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। और शेष नाग जिसकी आज्ञा से धरती अपने शीश पर धारण किए हुए, जिन्होंने क्षण मात्र में ही शिव जी का धनुष भंग करके तुझे और तेरे समान दुर्मति राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया था, और जिनकी अर्धांगिनी को तू छुरा कर लाया है, हे अधम, मैं उन्हीं समर्थ राम का सेवक हूं। घूमते घामते कुछ भूख लगी तो फल खाने लगा, अरे अपने स्वभाव वश दो चार पेड़ मुझसे टूट गए, और जो मेरे भोजनानंद में बाधक हुए वे मारे गए, इसमें मेरा क्या दोष है।
1: अरे कुटिल कद, तू कदाचित मेरे प्रभाव को अब भी नहीं समझा। देख, मेरे इंद्रजीत पुत्र ने तुझे क्षण मात्र में ही बांधकर पटक दिया है।
3: हे महाराज रावण, तुम्हारी शक्ति और प्रताप से मैं परिचित हूं, और मुझे अपने बांधे जाने की तनिक भी लज्जा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार बंधकर भी मैं अपने प्रभु का कार्य कर रहा हूं।
1: इस प्रकार बंदी होकर तू अपने स्वामी का क्या भला कर रहा है बंदर।
3: हे दशानन, मैं तुमसे सविनय प्रार्थना करता हूं कि अपना अभिमान छोड़ दो, जिसके कारण महापंडित होकर भी तुम मेरे प्रभु की लीला को समझ नहीं पा रहे हो। हे वीर, तुम अपने परम पवित्र ऋषि कुल की तनिक तो लाज रखो। ये मत भूलो कि जिनकी सती पत्नी का तुम हरण कर लाए हो, उनके भय से देवता और राक्षसी क्या स्वयं काल भी थर थर कांपता है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान।
1: कोई है, इस दुष्ट की गर्दन उतार लो।
4: हे परम प्रतापी, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, आप ऐसा पाप न करें।
1: तुम्हारी यह मंत्रणा मुझे स्वीकार है विभीषण, मैं अब इसका वध नहीं करूंगा, वरन इसकी अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेजे देता हूं। बंदरों की अपनी पूछ पर बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूछ में कपड़ा लपेट कर और तेल छिड़क कर आग लगा।

0: उलटि पुलटि लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी।
1: हे माता, आपके चरणों के प्रताप से मैं लंकेश को उचित शिक्षा देकर आ रहा हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने मुझे चिन्ह स्वरूप अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे अपना कोई चिन्ह देने की कृपा कीजिए।
2: हे पुत्र, श्री मेरा चूड़ा मणि तुम लेते जाओ, इसे देखकर मेरे नाथ संतुष्ट हो जाएंगे। और कहे हो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदो सम भारी, हर हुनाथ मम संकट भारी। कहना हे नाथ, यदि आप एक मास के भीतर मुझे लेने के लिए ना आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी।
1: हे माता, आप अपने मन को इतना छोटा न कीजिए, धैर्य धरिए।
2: हे पुत्र हनुमान, मैं कैसे धैर्य धारण करूं? प्रभु कृपा से तुम आज आ गए तो मुझे जीने का कुछ सहारा मिल गया है। तुम्हें देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है, पर अब तुम भी जा रहे हो, मेरे लिए वही दुखदायी दिन और वही प्राण लेवा रात फिर से आ गई।
0: जनक सुते ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई, कपि गमन राम पही की। हनुमान जी ने लौटकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत आदि से सब कथा कही। उसे सुनकर परस्पर प्रेमवश मिलते हुए स्वामी और सेवक दोनों ही भाव विभोर हो गए। और कुछ समय बीतते न बीतते वानर सेना लंका की ओर प्रयाण करने लगी।

ಅಂತರ ಕೀರು ಕಗನ ಬರಬಾಯೋ ಅಪನೀ ಸುರತಿ.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।